0: रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा वस तेरा कर भला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर माण महाता तेज अपना आप जार सर्व कला भरपूर दी सजत कता नानक दासन दास
1: ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक कर चिहन यर भरन जात यर पात नहन जेह रूप रंग यर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहि सहान गणिजै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत काल समुद्र पय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बस है संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जानयो पयो तिह समसर सोई तरन गगन नवखंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पर पन मथरा कश भेद नहीं गुर अर्जुन परतख हर मेल लहो दयाल टह पय द्वारयाल रख ले बहु दीन दयाल प्रमत बहु हारिया भगत वशल तेरा बिरद हर पतत उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिनो मोहे सारिया कर गहले हो दयाल सागर संसारिया लिख कतहे ना छूटिया खिन खिन भूलन हार बखसन हार बखसल नानक पार उतार सुकहु टल गुर सेविया अहनिस सहज सोभाए धर

बिनवंत नानक दास तेरा, मेरा प्रभ अगम अथाह, सह अटल गणया पूरन संजोगो

मेल संत आए प्रभ त्याए बड़े अचरज जानियां मेले एकत्र होए सहज टोए मन प्रीत उपजी मानियां मेल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस पुगो बिनवंत नानक सब संत मिली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा।

गोर चरणी लागी राम, गोर चरण लागी सहज जागे, सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत तोरे, हार मिले कंत विछुन्या।

0: बटाओ तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह नेह चल चौर शत
1: बड़ी बड़ी वड्डा पर

अंदर सात जीव के तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जी दे हजूर शब्द चाऊं की आनंद साहब जी की अरदास भुल चुप मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी देन हाजिर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चिते आवे सिख पढ़ दे सुन दे सर्वत लागे बंद हुवना नानक नाम

रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जी अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरा बस तेरा कर पला तेरा कर नंद बधाई तुद कर माण महता ते जापना आप जर।

पौड़ी वडी वडा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग नेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सबके जान ला सब सिर बस तेरा खरपला तेरे कर नंद वधाई तुद कर मान मता तेज अपना आप जल सर।

ताका रिजक आगै कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोए ना किस की धरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन भाओ करिया। ऊडे ऊडया वैसै कोसा, तिस पाछै बचरे छरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दास अष्ट सिद्धान, ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइया, तेरा अंत न पारा वरिया। सब निदान दास अष्ट सिद्धान, ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइया, तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगमे अपारा। सब ते आवह सब ते आवह तुध जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर ते आवह संत हो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू काट काट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बिडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवा है जो सेवा है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर ते आवह हर ते आवह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त भए जिन हर ते आया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ ते आया जी, तिन का भउ सब गवासी। जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर ते आया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करहे हर पूजा जी, तप तप है जप हे बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वडे अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निहचल करता सोई।
तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सोहोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हौ पाई। रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया, जिस नौ कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल। जिस नौ तू जानाए सोई जन जानै, हर गुण सद ही आख वखाणै। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ै पहिले निवासा। पानी पावक तिन्हे किया, पंक जो मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी अले, मान एक ना चेत समूड मना। हर विसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हौ जति सती नहीं पड़िया। मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी सरना। जिन तू नाहीं विसरिया, आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाओ जाप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा, सरण परे की राखहु सरमा। जाप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम सरण परे की राखहु सरमा। एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं, कबेउ बाच बेनती चाओ पई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहै हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु,
ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵਹੁ, ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖਿਓ ਸਵੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਮੋ ਰੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰ ਦੈ ਕਰੀਐ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕਉ ਆਜ ਸੰਗਰੀਐ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੈ ਪਿਆਸਾ, ਤੁਮਹੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਤਿਆਊ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਊ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਝੈ ਉਬਰੀਐ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ, ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਧੁਜ ਜੂ ਕਰੀਅਹੁ ਰੱਛਾ, ਰਾਖ ਲੇਹੁ ਮੋਹਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪ ਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ, ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ, ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ, ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਅਹੋ ਹਮਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਿਵ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦੀਓ, ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋ ਵਧ ਕੀਓ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ, ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ, ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ, ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਤਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ, ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੂ ਕਬਹੂ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਤਰ ਸਭਹੂ, ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ, ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਨਿਰਲੰਬ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ, ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ, ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ, ਤਾਕਉ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ, ਮਹਾਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ, ਮਹਾਦੇਵ ਕਉ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸਿਵ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭੇਵ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ, ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹੁ ਵਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ, ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤ ਜਕੀਨੀ, ਉਤ ਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ, ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸੰਕਰ ਇਕੈਠਾ, ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਪਵ, ਆਦਿ
जुगाद स्वरूप स्वयं पहव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दोष्ट जिते उठ वत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तोज तब सरनी परे तिनके दोष्ट दुखित वै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाह छुए सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फासते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोखते रहा खाड़।

सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सवा, बहुभेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तुहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै, गहो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज आस, गोविंद दास तुहार।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दो ता गावहु हरि केरा मन जिने वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ सोआमी सो क्यो मन हो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबान क्या नाही कर तेरा कर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वड़े आईया कहे नानक सुनहो संतहो शब्द तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागा कर सुभागा शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे कहे नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनद सुनहो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा
ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈ ਆ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰ ਧਾਰੋ, ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਆ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

बोलोंजे प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास है जी। सर्वत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे।

गोपाल गोपाल तेरा आरता जो जानो तुम्हारी भगत करंते तिनके काज सवारता गोपाल तेरा आरता जो जाना तुम्हारी भगत करंते तिनके काज सवारता।

दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख होवा सिफत खसाम दीन उर अरसह कुरसह।

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुर्दाई दाया, खेलै सगल जगत चंगे आई।

0: मंडला खंडावर भंडा खंड जजेर उत्पुजा खाणी सेत जा सो मित जान नानका सरा मेरा जनता नानक जंत पाए कै समाले सपना जिन करता करना किया चिंता पे करनी सो करता चिंता करे जिन पाए जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस ती बाणिया पग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला
1: लख ने किया चंगियाईयां लख पन्ना प्रभा लख तपो प्रतीर्था सहज वेबा लख सूरतन संग्राम रण में छोटे परा लख सुखी लख ज्ञान जिन करते करना किया देखिया आवण जान नानक मति मिथिया कर्म सच्चा निशान सच्चा।

राजा कुड़ प्रजा कुड़ सब संसार कुड़ मंडप कुड़ माड़ी कुड़ बैसनहार कुड़ सोना कुड़ रूपा कुड़ पहननहार कुड़ काया कुड़ कपड़ कुड़ रूपया पार कुड़ मिया कुड़।

0: ब्रह्मवत् अनंत निर्मल बेगासी गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी जानको हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो
1: सत सत हर सत सत सते सत पणिया दूसर आन न अवर पुरख पौ रातन सुनिया अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जे रसन चाखे तेह जन तृप्त।

0: जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो।
1: जनक सोए जिन जानिया, उन मन रथ धरिया, सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया, अकथ

सब खलक सयानी मैं बौरा मैं बिगड़ियो बिगड़े मत औरा रहा अपना भौरा राम कियो भौरा सत गोर जार गयो ब्रह्म मोरा मैं बिगड़े अपनी मत खोई मेरे परम भूलो मत को जो अपना पछने आप पछने ता एक जाने अब है न माता सो कबहो न माता कह कबीर राम रंग राता अब है न माता सो कबहो न माता कह कबीर राम रंग राता का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह बिलावल विद्या न पराओ बाद नहीं जानाओ हर गुण कथत सुनत।

पैज पंथ के जेता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाहा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बोंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखां दा मन नीमा मत उच्चे मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नू विसोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभार दा दान खालसा जी नू बख्शो हे नमानियां दे मान नतानियां दे तान नियोटियां दी ओटा तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर सबद चौंके आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखां प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसार भेटा कीता गया है तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवै परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवै नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा।